शब्द है कांडा मोहल्ला चौथा पड़ताल। मन जापहो राम गोपाल, हर रतन जवे हर लाल, हर गुरमत गुरमुख कड़टक साल, हर हो किरपाल। किरपा होवेगी होवेगी, मन नाल जपो सतनाम। कोई भुलेखा नहीं रहिंदा, थोड़ा जा ध्यान देने की लोड़ है। किरपा होएगी हो दो बार आख्या, होवेगी किरपा होवेगी किरपा। पर मन जापहो राम गोपाल, उस सृष्टि नू पालन वाला जिहड़ा जर्रे जर्रे च है, उन्हूं मन करके जपो। मन और जबान एक करके आखो सतनाम। यह मोलक रतन है। मन जापहो राम गोपाल, हर रतन जवे हर लाल, हर गुरमुख कड़टक साल, हर हो कृपा। ये अस्थाई है, ये चार ताल च। पहला अंतरा है, तुमरे गुण अगम अगोचर एक जी क्या कथे बिचारी। तेरे गुण बेअंत ने ते मेरी एक जबान की कह सकती है। तुमरे गुण अगम अगोचर एक जी क्या कथे बिचारी, राम राम राम राम लाल, तुमरी जी अकथ कथा, तू ही जाने। तेरी गति नू कोई नहीं जान सकता, सब आखो सतनाम। हर की गत ने को जानी,

का तेरा ए नहीं। प्यारे गुरुदेव सतगुरु सच्चे पातशाह जी, साडे जीवन दे विच जो सोझी विचार और मत अज्ञानता के कारण दुनियावी मोह ममता के कारण अत्यंत तृष्णावां के कारण जो असल सोझी होनी चाहिए है इंसान में वो नहीं है। ते गुरु बाबा जी अपने शब्दों के राही अपने इन्हों पवित्र वचना के राही सानू ओ मत बख्शते हैं जिस मत नूं गुरु मत आख्या जाता है, गुरु की मत जो कि जीव के जीवन च आए तो बिना इतनी देर तक जीव के जीवन के जिंदगी दे विच गुरु की मत ना आ जाए उतनी देर तक वह अंधेरे दे विच ही रहिंदा है, अंधकार दे विच ही रहिंदा है। कल दे कीर्तन दे विच असीं यही विचारिया सी, मत जो साधारण तौर पर सानू मिली है उस मत दे विच अजिही शिक्षा शामिल नहीं जो कि साडे जीवन नू सफल कर सके, साडे जीवन नू इसकी मंजिल तक पहुंचा सके अते मनुखा जन्म असी सफला कर सके। गुरु बाबा जी की बाणी असी सारे पढ़ते हैं अते गुरु बाबा जी की बाणी दे विच एक गल बिल्कुल स्पष्ट है कि साडे इस ह्यूमन फॉर्म दे विच आण दा कोई बहुत ही खास पर्पस है। एवें नहीं असी आए, ह्यूमन फॉर्म दे विच आण दा बहुत वड्डा रीजन है, एक खास मकसद है जिसनों असी पूरा करना है। ये शिक्षा ये तालीम असी बड़े कैजुअल माइंड के नाल सुनते हाँ पर इसनों असी बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेंगे। पर महाराज जी की बाणी इसनों बहुत सीरियसली लेंगे। महाराज जी की बाणी आखदी है तुसी सिर्फ एक ही काम करन दे वास्ते आए हो, तुहाडा इस ह्यूमन फॉर्म दे विच आण दा बहुत एक भारी मकसद है। वो की है? गुरु बाबा जी आखदे हन अपनी पवित्र बाणी दे विच

गुरु महाराज जी दसते हैं कि इंसान सानू समझांदे हैं, मत दिंदे हैं, इस शब्द दे राही साडे जो जीवन रुक गए हैं, असी राह च ही किते डेरा लगा लिया है, मंजिल तक अपड़े ही नहीं, मंजिल दा ख्याल ही नहीं, मंजिल दा चेता ही नहीं, अते रस्ते दे विच ही किते डेरा बना लिया है। गुरु बाबा जी ने आख्या मंजिल ते पहुंचन तो पहला डेरा नहीं बनाई जा, मंजिल ते पहुंचन तो पहला रुक नहीं जाएगा, तेरी मंजिल किते होर है लेकिन तू डेरा किते होर बना के बह गया है, रस्ते च ही रुक गया है। असि इन्हां कीर्तना नू जे ते इस तरह सुनांगे कि असि अपने जीवना नू कोई इंस्पीरेशन दे के अगान तोरना है तो जो साडा फर्ज बनता है वह असि करना है, फिर ते कीर्तन कीते और सुने बहुत ही भागा की गल है, नहीं तो साड़ी आदत नू महाराज जी जानते हैं, वह भी मैं आप जी सुनानी चाहना थोड़ी जी। साड़ी जो आदत है, जिस तरह मैं कल भी कीर्तन च अर्ज की सी कि मैं एक लफज भी अपने पासों नहीं कहना, तो जे कोई गल चुभमी भी लगे तो वह गुरु महाराज जी की है, उन्होंने हक है सानू समझाने का, कई तरह कहने का। गुरु महाराज मनुख के जीवन नू जानते हैं, यह सुन सुना लेंदा है, पर उसे तरह का ही बनिया रहिंदा है, बदलता नहीं। सबे गल्लां जातियां सारियां गल्लां जान लईयां, सुन लईयां, पढ़ भी लईयां, सुन के चुप किया, पर फिर भी कहिंदे सुन के यह चुप किया रहिंदा। सबे गल्लां जातियां सुन के चुप किया फिर चुप किया रहिंदा है, जीवन दे विच ए एक्शन नहीं लेंदा। सब तो पहला तो इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए है, इन्फॉर्मेशन मिलने तो बाद इंसान का फर्ज है कि उस उत्ते एक्शन लवे। गुरु महाराज आओ अज के कीर्तन दे विच जो सानू समझा रहे हैं वही कहते हैं कि जिथे तुसीं रुक गए हो, जिथे तुसीं अपना डेरा बना लिया है, जिसनू तुसीं अपनी दुनिया बना लिया है, कहिंदे ओ तुहाडी दुनिया नहीं है, इत्थे तुहाडा डेरा नहीं है, इत्थे तुहाडा घर नहीं है, इत्थे तुहाडी मंजिल नहीं है। बच्चों प्यार नाल पिछे लै जाओ, इस तरह कीर्तन च डिस्ट्रैक्शन होंदी है और उस ख्याल की लड़ी के विच विघन पैंदा है।

आप जी ने बाणी नूं पढ़दिआं जां सुणदिआं एक लफ्ज बहुत दफा सुनिया होएगा, निज घर। निज घर बाणी च आंदा है ना। गुरु महाराज कहते हैं जितनी देर तक तू अपने निज घर के विच नहीं चल जाता, जिहड़ा तेरा अपना घर असल घर, उतनी देर तक तू बेघर है। बेशक तेरे पास घर है भी, तां भी एक घर तेरा नहीं, एक घर नहीं। तो गुरु महाराज जी की बाणी का यह जो सुनेहा है, यह जो मैसेज है, यह जी मत है कि इंसान तेरी जिंदगी ने उस दिन पूर्ण तौर पर सुकून और सुख के विच पहुंचना है जिस दिन तू अपने निज घर के विच पहुंच गया। कीर्तन सोहले का पाठ असी रोज करते हैं। सोहले की बाणी के विच असी ये पंक्ति भी रोज पढ़ते हैं। पंक्ति असी रोज पढ़ते हैं, पर असी पंक्ति पढ़ जाने हैं निज घर नूं प्राप्त करन दी ना ते अंदर कोई ख्वाहिश पैदा होंदी है ते ना ही वो चीज साडे वास्ते कोई खास इशू बनती है कि मैं अपने इस गुरु बाबा जी दे वचन च जो अपने निज घर नूं लभण नूं आख्या जा रहा है उस निज घर नूं भी लभना है। पर असीं पढ़ रोज जाने हैं। यही कारण है कि गुरबाणी सिर्फ एक पढ़न तक रह गई है, जो इसकी असल साइंस है उस वल असी कदम नहीं उठाए, अपनी जिंदगियां नूं उधर तोरिया नहीं। हुण पंक्ति रोजाना जिहड़ी फेमिलियर है, असी पढ़ते हैं। महाराज जी कहते हैं

आप अपनी सुर्ख नु वापस कर जोड़िए। गुरु महाराज जी आखते हैं, सुखी ओही हैं जेड़े अपने इस जीवन दे विच निज कर लभ लैणगे। महाराज जी आखते हैं, जिनी कर जाता अपना से सुखिए भाई, जिनी कर जाता अपना से सुखिए भाई। ओ सुखी हन, असी सुख लभते हैं ना सर, असी सब सुख लभते, पर कहिंदे ओही सुखी होणगे जेड़े अपना निज कर लब लैणगे। जेड़े घर तो ही बाहर हैं और सुखी किवें हो सकते हैं, वे घरे किवें सुखी हो सकते हैं। जिनी घर जाता अपना से सुखी है भाई। सो बाणी दे विच थां थां थां थां ते अनेक पंक्तियां ऐसियां आंदियां हैं जिन्हां दे विच महाराज जी निज घर का जो कॉन्सेप्ट है, निज घर का जो विचार है वो सानू सुनाउंदे हन। थोड़ियां पंक्तियां मैं आप जी दे सामने होर अर्ज करां कि निज कर तो उन्हां दा मतलब की है, व्हाट डू दे रियली मीन बाई निज कर। आओ एक पंक्ति दे राही समझण दी कोशिश करिए। कहिंदे हन

गुफा पुराने लोग ऋषि मुनि गुफामा बना के रिहा कर दे सन। गुरु महाराज जी आख दिन साडी भी एक गुफा है, असि एक गुफा दे विच रहने हैं, पर वो केड़ी गुफा है? कहिंदे सहज अवस्था। हुण सहज की चीज है? आत्मा ही सहज है। अकाल पुरख वाहिगुरु सहज है। सहज का मतलब जो कदे भी ना बदलता होवे उसनु सहज आखते हैं। शरीर सहज दे विच कमजोर हुंदा है, कदे ताकतवर हुंदा है। शरीर दे विच अनेकां चेंजेस आंदियां हन, कदे बचपन है, कदे जवानी है, कदे बुढ़ेपा है। शरीर दे विच हर वक्त चेंज आंदी है। शरीर दे अंदर एक होर वस्तु है, वह है मन। वो भी सहज दे विच नहीं है। ना शरीर सहज है, ना मन सहज दे विच है। ते सहज दे विच केड़ी वस्तु है? केड़ी वस्तु है? आत्मा। आत्मा जो वस्तु है वह सहज दे विच है। गुरु महाराज जी कहंदे वो सहज जो है, आत्मा जो है, उस दे विच असीं अपनी गुफा बना के उत्थे रहने हां, वो साडा घर है।

अर्थ अनंत, अनंत का मतलब लिमिटलेस, कहते बेअंत इसका कोई हिसाब ही नहीं है, इतनी खुशी है। उते हरख अनंत सोग नहीं बिया, सोग का नामो निशान नहीं है, कहते हैं सोग घर गुरु नानक को दिया। परमेश्वर ने अकाल पुरख ने गुरु नानक नो कर दिता है, वह है निज घर। किते महाराज उसनु सहज गुफा आखते हैं कि सहज गुफा घर आसन बांधिया, किते आखते हैं हरख अनंत सोग नहीं बिया, सोग घर गुरु नानक को दिया। तो एक पंक्ति होर सुनाना, कहते हैं नानक बद्दा करता हां। असी भी जदों एक ते हुंदा ना भी बनया बनाया कर ले लेना, एक हुंदा है कस्टम मेड हाउस बनवाना, के प्रॉपर कोई आप सिलेक्ट करके लॉट लैके कोई लोकेशन देख के कोई जगह लैके फिर आप उत्ते अपनी डिजाइन दा अपने मतलब दा घर बनवाना, घर बनना। गुरु महाराज जी आखदे हन कि मैं अपना घर उथे बनाया है, नानक बद्दा करता हां, कि मैं अपना घर तहां यानी उथे बनाया है, किथे जिथे मृत ना जन्म जरा, ना उथे मृत्यु आंदी है, ना उथे जन्म है, ना मरण है, ना बुढ़ेपा है। भाव उथे निज घर महल पावो सुख सहजे बहोर ना होए गो फेरा, उथो फिर वापस फेरा नहीं होएगा। उस घर च पहुंच के ही तुसी अपनी मंजिल च पहुंचते हो, उस तो उरे उरे जितने भी घर हन गुरु बाबा जी आखते हैं ये तुहाडा डेरा नहीं है, ये रस्ता ही है। मनुखा जन्म जो है ओ राह दे विच ही तुसी हो, ये पेंडा ही है, इसनु मंजिल ना समझ लो। ते इथे घर बना के बैठ गए ते उथे रुक गए ते फिर तुसी मंजिल ते ना पहुंचे, रस्ते दे विच ही रुक गए। ये है गुरमत की तालीम। प्यार नाल इस पंक्ति नु गाओ।

एक रात दे प्रौने तुसी इथे आए हो, पर आसां ऐदां बनियां होईयां हन जिवें कई युग तुसी इथे रहना है। बाबा जी आखदे हन गुरु प्रसाद जाने मेहमान, गुरु दी कृपा दे नाल अपने आप नूं इथे चंद एक दिना दा मेहमान समझे तां किस दरगाह पावे मान, तां जाके नूं दरगाह च मान मिलना है, इज्जत मिलनी है, दरगाह च पहुंचना उसने। सो प्रौने दी तरह महाराज जी ने ए मेहमान दा मेटाफोर जो है ए क्यों लिया है इसनु थोड़ा समझ लईए। क्योंकि मेहमान जदों किते जांदा है उसनु ए पता हुंदा है कि उसका घर नहीं है और उसने इथों जाना है, इस करके वो उस जगह दे नाल अटैच्ड नहीं हुंदा, उसकी तमन्ना अपने ही कर जान की बनी रहती है। हुण साडे अपने दिलां च अपने उस कर जान की कोई तमन्ना नहीं, इत्थे ही रहण दी है। जिवें मेहमान किसी दे घर जाके फिर ये सोच के बह जा के हुण इत्थे ही मैं रहना है तो कितना गलत एटीट्यूड होएगा। नंबर दो, जदों मेहमान किसी दे घर च जांदा है तो मेहमान उस घर वाले दीयां चीजां नूं अपनियां नहीं बनाउणियां शुरू कर लैंदा। अकाल पुरख की यह सृष्टि है, अकाल पुरख दी सारियां वस्तुआं ते दातां हन, सब कुछ उसका है, लेकिन असी एक मेहमान की तरह जरूर आए हाँ पर बाद दे विच उस दीयां वस्तुआं नूं इकट्ठियां करनियां शुरू कर दिता। जिस घर च मेहमान आए हाँ हुण उसका वध तो वध जितना कुछ हो सकता है संभाल लो, इकट्ठा कर लो, जितना हाथ लगता है लगा लो, इसके हाथ होए तां सब कुछ ले। महाराज जी बाणी च आखदे ने कि ये बंदे दे वास होवे ते सारा कुछ इकट्ठा कर ले, कहिंदे तुसीं इकट्ठा करन लग पए हो, तुसीं ते मेहमान दी तरह आए हो, कुछ भी इकट्ठा करन दी जरूरत नहीं है, मेहमान दी तरह रहो। मेहमान नूं चीजां ऑफर कीतियां जांदियां हन बड़े अदब नाल सत्कार नाल वरतन लई, पर वो ये तो नहीं कि उन्होंने चाके अपने बैग दे विच पानी शुरू कर दे ते बाद क्लेम करे कि मेरियां हन। अकाल पुरख वाहिगुरु सानू अत्यंत दाता सुख खुशियां बख्शता है, पर किसी भी चीज नूं ये आखना कि यह मेरा है उत्थे फिर मेहमान नहीं रह जाता, उत्थे फिर चोर बन जाता है, बिन नावे सब चोर। महाराज जी आखदे हन मेहमान दे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हुंदे हन, मेहमान बड़े संजम दे नाल उत्थे दी चीजां नूं वरतदा है, उन्हां नूं अपनियां नहीं समझदा, उत्थों जाण दा भी उहदा कोई प्लान हुंदा है, ये नहीं कि फॉर एवर ही उत्थे आया हुंदा है। मेहमान चंगा ही उदों तक लगता है जदों पता हुंदा होए कि इस तरीक नूं इसने चले जाना है, जो अणमिथे समय लिए आ जाए उहदा पता ही नहीं कि उसने जाना है जां नहीं जाना, फिर मेहमान मेहमान नहीं रह जाता, उसकी कदर नहीं रह जाती। गुरु महाराज कहिंदे हन वाट न करे मामला जाने मेहमान, कहिंदे अपने इस दुनिया इस जिंदगी दे जीवन दे रस्ते उत्ते परमात्मा दे वल नूं जिहड़ा रस्ता जा रहा है इस वाट दे उत्ते अपने लिए बहुते झमेले ना खड़े करो, बहुतियां कॉम्प्लीकेशन ना पैदा करो, बहुते मामले ना खड़े करो, बहुता अपने आप नूं उलझाओ ना, जीवन नूं सीधा साधा साफ सुथरा सिंपल रखो अते अपने आप नूं मेहमान जाणो। इथे तुहाडा डेरा बिल्कुल नहीं है, डेरा किते होर है, जे इथे अपना डेरा बना के बैठ गए राह च ही रुक गए ते राह च रुकियां दे नाल फिर की हुंदा है वह मैं कल नूं आप नूं सुनावांगा। भूल चुक दी खिमा इस पंक्ति नूं गाओ और कीर्तन दी समाप्ति करांगे।